देखो यार, एल्बम मैं देख रहा सी, बड़ी चल रही है, बड़े चलो स्ट्रीम्स चंगे आ रहे हैं। सो निज्जर निज्जर भाई कहिंदा सी है ही बड़े महंगे बंदे हैं कि नहीं। ओके, एक थानू असी नाल दी नाल डिटेलिंग ब्रोज वाले दा नंबर फिर तो दई। तुसी ना अपनी गड्डी च हुण स्टार लाइटां लवाओ, जिवें रोल्स रॉयस दे विच छत ते तारे नहीं लगे होंदे, लाइटां लगियां होंदियां, उवें ही जशन हुणे करदे आ काम। स्टार लाइट लवाओ ते नाल गड्डी च साउंड डैम्प भी तुहानू फ्री दे रहे आ, तुहाडी गड्डी दी साउंड क्वालिटी फ्री च ही इह फिक्स कर देणगे। सो नाले रोल्स रॉयस वांगू गड्डी दी छत ते स्टार लाइटां लवाओ, कोई कट वड नहीं करदे। नंबर नोट करो इहनां दा, 6478192034, 6478192034, 6478192034, 647-8 19-2034, 647-819-2034, 647-819-2034, 647-819-2034, 647-819-2034, 647-819-2034, 647-819-2034, 647-819-2034, 647-819-2034, 647-819-2034, 647-819-2034, 647-819-2034, 647-819-2034, 647-819-2034, 647-819-2034, 647-819-2034, 647-819-2034, रमनदीप जगदे का फोन नंबर तुसी नोट कर लो, 6478085859, 6478085859। ते गुरिंदर सिंह जो कि बिजनेस कंसल्टेंट ने, गुरिंदर सिंह जी थोनू गाइड कर दे कि बिजनेस कोई भी जो शुरू करनी है किवें करनी है,

0: 7997887 थैंक यू जी।
1: पाजी अज करे तंदूरी बनाओ, पर जो स्वाद तंदूरी बॉयज दे आना ओ करे नहीं बन पाउना।
2: हाय गाइस, एंजॉय करो तंदूरी बॉयज, वेज नॉन वेज स्वादले तंदूरी खाने ले पहुंचो तंदूरी बॉयज।
1: सांझा विरसा रेडियो दा रेफरेंस देन ते पाओ 10% डिस्काउंट। पाठ जागो अते वेडिंग ले आज ही कैटरिंग बुक करो 9059562111 9054519200 सर्विंग यू फ्रॉम 3 लोकेशंस।
3: इस साल तो इंश्योरेंस बहुत महंगी होगी, घर ते ऑटो दी इंश्योरेंस दी किश्तां ने सारा बजट हिलाता।
4: ओ जी, अमनदीप कौर इंश्योरेंस एडवाइजर दे हुंदिया कोई फिकर नहीं, ए देन के बेस्ट रेट्स इन द मार्केट विद फुल कवरेज।
3: होम, ऑटो, कमर्शियल, ट्रकिंग ते बिजनेस इंश्योरेंस ले कॉल करो इंश्योरेंस एडवाइजर अमनदीप कौर होरानू एट 4166182761 416-618-2761।
5: मैं सुखमन सिंह तुहाडा वार्ड 9 & 10 तो रीजनल काउंसलर उम्मीदवार। मैं एक वकील हाँ अते मैं कैनेडा दी सब तो वड्डी लॉ फर्म विच काम करदा हाँ। ब्रैम्पटन दे निवासी वधे हुए प्रॉपर्टी टैक्स अते क्राइम तो बहुत दुखी हैं। सानू रीजनल काउंसलर चाहिदा जो इन्हां मुद्दियां दी आवाज उठावे। अक्टूबर 10, 11, 16, 17 दी एडवांस वोटां ते मैनू वोट पाके कामयाब करो। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन विजिट sukhmansangha.com। ऑथराइज्ड बाय द सुखमन संघ कैंपेन।
6: स्टीफन फर्नीचर की धमाकेदार फेस्टिवल सीजन सेल। इस साल फेस्टिवल सीजन में अपने घर को भी जरूर सजाइए। अपने मनपसंद बेस्ट क्वालिटी हाई एंड ब्रांडेड फर्नीचर पे कोई भी रीजनेबल ऑफर एक्सेप्टेबल होगा तो फिर आज ही स्टीफन फर्नीचर आए और अपने घर को स्टीफन फर्नीचर के बड़े बड़े ब्रांडेड फर्नीचर पे बड़ी बड़ी डील्स का फायदा जरूर उठाए। सर्विंग सिंस 1992, फाइनेंसिंग ऑप्शन अवेलेबल। टू लोकेशन टू सर्व यू, 2575 स्टील एवेन्यू ईस्ट ब्रैम्पटन, 9057900560, 6 Marconi Court, Bolton, 9059519394. Stephen Furniture ki dhamakedar festival season se.
7: ਓਏ ਇੰਨੀ ਗੌਰ ਨਾਲ ਕੀ ਲੱਭੀ ਜਾਂਦਾ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਚੋਂ?
8: ਉਹ ਭਰਾਵਾ ਟਰੱਕ ਲਈ ਲੋਨ ਲੱਭਣ ਡਿਆ।
9: ਸਮਾਰਟ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਐਂਡ ਲੋਨ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਤੇ ਆਓ। ਟਰੱਕ ਲੋਨਸ, ਮਾਰਗੇਜ, ਡੈਟ ਕੰਸੋਲੀਡੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਪਾਓ। ਦਲਵਿੰਦਰ ਜੱਜ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਮਾਓ 647-504-3397, 647-504-3297, 20 Maritime Ontario Boulevard, Unit 210, Brampton, or visit www.smartfinancialgroup.com.
10: ब्रैम्पटन सिटी काउंसिल वार्ड 9 अते 10 लई भरोसे योग उम्मीदवार डॉक्टर आजाद गोयत नू अपना कीमती वोट पाओ।
11: डॉक्टर आजाद गोयत जिन्हां मुद्दियां लई जनता दा साथ देणगे उन्हां च अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी अते पब्लिक कंसल्टेशन, प्रॉपर्टी टैक्सेस विच कटौती, क्राइम ते एक्सटॉर्शन ते कार्रवाई, वड्डे बिजनेसमैन अते पॉलिटिशियंस दा नेक्सस तोड़ना, लोकल डेवलपमेंट, नाली वार्ड नंबर 9 ते 10 लई गो स्टेशंस नाल कनेक्टिविटी, फुल पुलिस स्टेशन, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, ग्रीन स्पेसेस दी मेंटेनेंस शामिल है।
10: इलेक्शन डेट 26 अक्टूबर 2026, एडवांस वोटिंग ऑन 9, 10, 11, 16 and 17 अक्टूबर। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन विजिट azadgoyat.ca। पेड फॉर एंड ऑथराइज्ड बाय कैंपेन ऑफ डॉक्टर आजाद गोयत।
12: किचनर विच शानदार कामयाबी तो बाद पंजाबी आर्ट्स एसोसिएशन हुन ब्रैम्पटन विच लेके आए ने बाली भुपिंदर दा लिखिया अते डायरेक्ट कीता नाटक जस्सू पुत। 10 अक्टूबर ब्रैम्पटन दे रोज थिएटर विखे। टिकटां ते वधेरे जानकारी लई कॉल करो 416-677-1555। पंजाबी आर्ट्स एसोसिएशन दी पेशकश बाली भुपिंदर दा लिखिया ड्रामा जस्सू पुत। टिकटां सिर्फ $15 अते $20। कॉल करो 416-677-1555।
13: जस्सू पुत हो गई।
14: पिछले 25 सालों तो राजनीति दी गहरी समझ रखन वाले ते ब्रैम्पटन नू चंगी तरह समझन वाले अमन शर्मा हुन ब्रैम्पटन दे वार्ड 7 ते 8 तो रीजनल काउंसलर दे कैंडिडेट ने।
15: की तुसी चाहुंदे हो एक ऐसा काउंसलर जो तुहाडी गल सुने ते तुहाडे मुद्दियां ते डट के काम करे? ता याद रखो अमन शर्मा रीजनल काउंसलर।
14: प्रॉपर्टी टैक्स, ट्रैफिक दे स्पीड बम्प्स, पार्किंग दी प्रॉब्लम, भीड़ भाड़ वालियां सड़कां, बाइक लेन्स, नॉइस पोल्यूशन, स्ट्रीट लाइट्स, डेवलपमेंट, सेफ्टी, सिक्योरिटी ते
15: ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਬਿਹਤਰ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ, ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਹੱਲ ਲਈ ਅਮਨ Sharma nu apna samarthan deo.
14: Ward 7 and 8. Remember the voting day, October 26, 2026. Advance voting, October 9, 10, 11, 16 and 17.
15: Paid for by Aman Sharma Campaign.
16: ਸਾਂਝਾ ਵਿਰਸਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਂਝਾ ਵਿਰਸਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ 6475542947 8355294 ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਸੀਂ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

0: अरे आप एक विधवा का अपमान हो रहा है और तुम आजकल अपना विवाह जिता रहा है।
1: मामा बचा लो मेरी माँ को मामा।
0: अरे ये क्या बचाएगा मुझे, मैं तो एक औरत की लाचारी पर हंस रहा है। ऐसे लोगों की जहरीली हंसी से तो एक औरत को वैश्या बनने में भी शर्म नहीं आएगी।
2: अरे चुप कर शर्म तो तेरे को आनी चाहिए। आज बचाऊंगा कल कौन बचाने आएगा तेरे को। औरत इसलिए नहीं कोठे पर बैठी क्योंकि वो बेबस है, इसलिए बैठती है क्योंकि वो जंग लड़ना नहीं चाहती।
1: बचा लो मेरी माँ को।
3: कोई शक नहीं नाना पाटेकर साहब, थोनों हमेशा दुनिया से याद रखा जाऊगा। थोड़े डायलॉग ते थोड़ा मैं लगता है ना दो तीन बार पुरस्कार भी मिले ने बख बख थावां ते। चलो परमिंदर जी नंगा सत श्री अकाल जी, स्वागत
4: जी। हरजीत जी सांझा प्रसाद जी सारी टीम सारे सुनने वाले भैणा भरा नूं प्यार सत्कार भरी सत श्री अकाल।
3: प्यार भरी सत श्री अकाल जी। इत्थों शुरू कर लैंदे आ पहलां, चलो भी नाना पाटेकर साहब दी काफी डायलॉग वधिया हुंदे सी, उहनां दा देहांत हो गया जी, चलो श्रद्धांजलि अपने वल्लों सारे परिवार वल्लों। ते पर इन्ना वधिया एक्टर, मतलब दो तीन बार पुरस्कार भी कहिंदे चंगे मिले इन्हां नूं, है ना
4: जी? बिल्कुल, नाना पाटेकर वर्गा जिहड़ा अदाकार आ, बिल्कुल थानू इंज ही लगता कि यह समाज का कोई सताया होया, कोई दुखी परेशान या समाज नू बदलन वाला एक विद्रोही किस्म का बागी किस्म का जिहड़ा सिस्टम नाल भिड़ना चाहुंदा वह जिहड़ा, और कई बारी मनां दे विच सारयां ने हुंदा कि यह सिस्टम तब्दील हो गए पर वो हया नहीं कर पाते। पर वो नाना पाटेकर वो दृश्य सिरज जाते कि अपने आप दे विच मतलब देखण वाला भी उन्होंने हिसाब नाल जीना शुरू कर दिंदा सी। सो बिल्कुल बेमिसाल किस्म का एक्टर सी, और गोवा दे विच 75 साल की उम्र च उन्होंने हार्ट अटैक की समस्या आई आ, हालांकि डॉक्टर ने काफी उन्होंने बचाने की कोशिश की है पर नहीं रहे। पर मैं लगता हरजीत जी कि बहुत ही जिंदगी भी बंदे ने की करनी होंगी है, थोड़ी जिंदगी भी 75 साल कोई छोटी नहीं उम्र होंगी, पर जेड़े उन्होंने पाए पूरने ने अपने आप दे विच वो एक वड्डी जिहड़ा गलबात आ जी, उन्होंने वड्डा नाम उन्हों का बन गया। ईवन के उन्होंने हॉलीवुड दियां फिल्मां दे विच भी काम किया, बॉलीवुड ने नहीं किया, सो हॉलीवुड दे विच भी उन्होंने वड्डा नाम कमाया। सो सदा हमेशा उन्हों का नाम चमकता रहेगा, जिवें तुसीं कहा बहुत वड्डे अदाकार सी, बहुत वड्डा कद सी। और कई बारी हरीश जी इदां भी हुंदा कि बंदियां दे चले जाण तों बाद उन्हों का की रुतबा सी ओ पता लगता, मैनूं लगता बहुत कुछ कहा जा सकदा
3: जी। बिल्कुल,
2: आप मुझे लटका देंगे, दोबारा इसी बार आएगी, आके बार आएगी।

0: सर्दी के दिन आने वाले हैं। अगर आप ओंटारियो में रहते हैं और आपकी आमदनी तय सीमा के अंदर है तो आप एनब्रिज गैस से मुफ्त इंसुलेशन, ड्राफ्ट प्रूफिंग और दूसरी सुविधाओं का फायदा उठा सकते हैं। ज्यादा जानकारी के लिए enbridgegas.com/winterproofing पर जाएं। नियम और शर्तें लागू।
1: This is AM 530, CHLO AM, serving Brampton, Mississauga, Toronto, the GTA, and the world at am530.ca. The opinions expressed in the following program are those of the host and their guests and do not reflect the views and opinions of the management and staff of CHLO AM 530.

0: जी हाँ, मोटर कार का तो मालूम नहीं, लेकिन आपको आपके बंगले तक पहुँचाएंगे जी यानी मॉर्गेजेस के मयंक भटनागर जी। हर तरह की मॉर्गेजेस में करते हैं स्पेशलाइज, वो रेजिडेंशियल हो, कमर्शियल हो, प्राइवेट हो, फर्स्ट या सेकंड मॉर्गेजेस, और या फिर आप हैं फर्स्ट टाइम होम बायर। मयंक भटनागर जी 6477-702-2023-647-702-23
1: भाई। ये ट्रक तो हुण मैं चंगी तरह चलाउण लग पिया, हुण सोचदा भी कोई यूज ट्रक ही लै लवां, पर समझ नहीं आउंदी भी कित्थों लवां।
2: ओ इहदे च सोचण वाली कड़ी गल आ, ईगल ट्रक सेल्स वाले बिल सेखो नूं कॉल कर, ओए ओहदे तों वधिया कोई नहीं।
3: जी हां, जे तुहानूं यूज ट्रक दी लोड़ है तो तुहाडी पसंद दा मेक एंड मॉडल दा ट्रक तुसीं इहनां तों लै सकदे हो। अपना ट्रक वेचण लई भी याद रखो ईगल ट्रक सेल, 17 स्ट्रेटन एवेन्यू, ब्रैम्पटन। कॉल विल सेखो 416-819-6000।
4: ब्रैम्पटन वासियों, रीजनल काउंसलर ले वार्ड 2 अते वार्ड 6 तो प्रेमपाल गिल चौन मैदान विच हन।
5: प्रेमपाल गिल दे कैंपेन ते मुख्य मुद्दयां विच पब्लिक सेफ्टी, सिक्योरिटी, अफोर्डेबिलिटी, बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर, लोकल जॉब्स अते बिजनेस ग्रोथ, लोअर प्रॉपर्टी टैक्स, सिटी हॉल विच ट्रांसपेरेंसी, ट्रैफिक, ट्रांजिट, पॉसिबल स्पेंडिंग अते पावर दा मिसयूज रोकना शामिल है।
4: वोटिंग डेट 26 अक्टूबर 2026। एडवांस वोटिंग दिया तरीका नोट कर लो, 9, 10, 11, 16 अते 17 अक्टूबर। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन विजिट प्रेमगिल.ca।
5: पेड फॉर बाय प्रेमपाल गिल।

0: यार इना इंश्योरेंसा ने ते तू घटाता वधिया ते जायज रेट कित्थों मिलेगा।
1: टॉप फाइनेंशियल इंक तो जो अपनी बेहतर ते भरोसेमंद सेवावां लई जाने जांदे ने।
2: क्रिटिकल मॉर्गेज RESP RRSP विजिटर इंश्योरेंस सुपरवीजा स्पेशल डिसेबिलिटी प्लान फॉर ट्रकर्स जे थोड़े कोल 20 नालों ज्यादा ड्राइवर ने ता तुहानू अनबीटेबल प्राइस लेके देंगे।
1: कॉल करो 20 सालां दे तजुर्बे वाले सुरजीत सिंह पड्डा जी नू 647-300-3100 647-300-3100
2: या मिलो 70 डेल्टा पार्क बुलेवार्ड यूनिट 11 ब्रैम्पटन।
3: लाओ जी चक्को फिर खुशखबरी ब्रैम्पटन निवासियां ले खुशखबरी हुण जदों भी तुसी कैनेडियन इंडियन या पाकिस्तानी ग्रोसरी खरीदना चाहो

समोसा एंड स्वीट फैक्ट्री जिथे पाजी दियां सारियां आइटमां $4.75 पर पाउंड तो शुरू ने। बेसन, पिस्ता, रसगुल्ले और जस्ट $5 पर पाउंड। तुहाडे इन्ने सालां दे भरोसे अते विश्वास कारण असी लेके आए कस्टमर्स एप्रिसिएशन सेल 2026। 100% कैनेडियन मेड टॉप क्वालिटी स्वीट्स हुण 3 लोकेशंस तो सर्व करदे ने। 2 इन ब्रैम्पटन, 1850 एल्बन रोड, ईटोबीको। वधेरे जानकारी ले कॉल करो 416-213-1165 ते 416-213-1165।

0: समोसा एंड स्वीट फैक्ट्री जिथे भाजी दियां सारियां आइटमां $4.75 पर पाउंड तो शुरू ने। बेसन पिस्ता रसगुल्ले और जस्ट $5 पर पाउंड। तुहाडे इन्ने सालां दे भरोसे अते विश्वास कारण असी लेके आए हैं कस्टमर्स एप्रिसिएशन सेल 2026 100% कैनेडियन मेड टॉप क्वालिटी स्वीट्स। हुण 3 लोकेशंस तो सर्व करदे ने 2 इन ब्रैम्पटन 1850 एल्बम रोड टोबीको। वधेरे जानकारी ले कॉल करो 416-213-1165।
1: The wait is finally over. Gordy Kumin of Remax Gold Realty proudly presents another golden opportunity to own premium retail and office space in South Caledon. Introducing Caledon Commercial Center, a new 15-acre commercial development located at the prime intersection of Highway 10 and Highway 410. Retail and office units are now available for sale. Secure your space in Caledon's next commercial destination. Contact our team at Remax Gold Realty to book your unit today.

बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है, तो इसीलिए आपने अपने टिकट बुक कर लो ताकि इस बार यूनिवर्सिटी शो मिस ना करो। मिलते हैं फिर 11 अक्टूबर टोरंटो रोज थिएटर शाम 7 बजे। सत श्री अकाल।

0: one-stop solution for all your mortgage needs. Bank declined. Mortgage for self-employed. Quick closing in 48 hours. Or commercial loan. Just don't worry. 647-512-7000. Mortgage broker Mukesh Chauhan from Mortgage Diligent. FSRA number 10252. Conditions apply.
1: Don't worry. Mukesh Chauhan hai.
2: यारों के साथ टशन या फैमिली के साथ करना हो जशन, ढाबा ऑन द फॉल्स आए, टेस्ट का वादा और चॉइस भी ज्यादा।
3: दिल्ली वाला बटर चिकन, रोगन जोश, सोया चाप, बेस्ट वेज नॉन वेज बिरयानी इन द टाउन, बेस्ट वेज नॉन वेज एपेटाइजर या माउथ वाटरिंग मेन कोर्स खाना हो तो सीधा चले आए ढाबा ऑन फॉल्स, द बेस्ट फूड इन नाइग्रा फॉल्स। LLBO एंड बियर ऑन टैप ऑल्सो अवेलेबल, वॉकिंग डिस्टेंस फ्रॉम द फॉल्स, फ्री पार्किंग। विजिट 5039 सेंटर स्ट्रीट नाइग्रा फॉल्स, कॉल 905-358-0864
2: 905-358-0864 Dhaba on the Falls.

0: हेलो।
1: वेरी गुड। नंबर एक क्विक है 6478180055 647-8180855। कुलदीप जी बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। सब प्रोग्राम पंजाबी रहना ते गलबात करिए या गाना ला दी। एक मैं थोड़े कंफ्यूज हाँ क्योंकि गल्लां बातां भी तैयार ने ते गल्लां बातां तां तुसीं जिन्नी मर्जी करा लो, बट खैर एक मैसेज लै लईए ते फिर एक गाना लाउने ते फिर आपां खुल के गल्लां बातां थोड़े नाल जरूर जरूर जरूर करदे आ।
2: मैं सुखवंत सिंह तुहाडा वार्ड 9 एंड 10 तो रीजनल काउंसलर उम्मीदवार। मैं एक वकील हाँ अते मैं कैनेडा दी सब तो वड्डी लॉ फर्म विच काम करदा हाँ। ब्रैम्पटन दे निवासी वधे हुए प्रॉपर्टी टैक्स अते क्राइम तो बहुत दुखी हैं। सानू रीजनल काउंसलर चाहिदा जो इन्हां मुद्दियां दी आवाज उठावे। अक्टूबर 10, 11, 16, 17 दी एडवांस वोटां ते मैनू वोट पाके कामयाब करो। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन विजिट sukhmansingha.com। ऑथराइज्ड बाय द सुखमसिंघा कैंपेन।
1: सो अर्जुन ढिल्लों का एक गीत आया, मैनू बड़ा डिफरेंट जिहा लग्या यार। आई डोंट नो तुसीं किन्ना इंजॉय किया, बट म्यूजिक बड़ा यूनीक है। जिहड़े कह लो कि सुर ते अर्जुन गा रहे, म्यूजिक चेंज हो रहा। सुनो थोड़ा जिहा, तुहानू पता लगूगा।